नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले

0: आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है, जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं, प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी

0: उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
3: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
4: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
2: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
5: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जान का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
2: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
7: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
6: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
7: आज ही डब्ल्यू

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और मैं हूँ आरजे प्रिया, लेकर आई हूँ आप सभी का पसंदीदा शो मस्त मुंबई।

शुक्रवार की सुबह है, शनिवार की सुबह है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। और जैसे ही हमने हेलो कहा, आपसे हाय कहा और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं और ये जो गुड मॉर्निंग के प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं ना, मज़ा आता है। और 8:47 हो चुके हैं, मस्त मुंबई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि आर्य प्रिया के साथ। तो आज क्या होने वाला है कार्यक्रम में खास बताऊंगी, लेकिन चलिए इस प्यारे से गीत के बाद बातों का और गीतों का जो ये सिलसिला है यूँ ही जारी रखते हैं।

0: नऊ दिवस करूया देवीच्या नऊ रूपांची आराधना.
1: अहो, पण आपल्या आजूबाजूला हे आहेत की कर्तृत्व, संघर्ष आणि जिद्दीनं आपलं वेगळं विश्व घडवणाऱ्या नवदुर्गा.
0: कुणी प्रतिकूल परिस्थितीत दोन हात करतय, कुणी आपल्या कर्तृत्वाने नव आकाश गाठतय,
1: कुणी समाजासाठी झटतय, तर कुणी आपल्या स्वप्नांना नवी दिशा देतय.
0: त्यांच्या संघर्षाची कहाणी, त्यांच्या यशाचा प्रवास
1: आणि त्यांच्या अनुभवातून मिळणारी प्रेरणा.
0: या नवरात्रीत भेटूया अशाच काही प्रेरणादायी स्त्रियांना, ज्यांच्यात आहे दुर्गेची शक्ती,
1: कर्तृत्वाची ओळख आणि स्वप्नांना गवसणी घालण्याची जिद्द.
0: हॅशटॅग नवदुर्गा या कार्यक्रमात
1: दिनांक 11 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर सकाळी 11 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या 100.1 FM गोल्ड वाहिनीवर
0: हॅशटॅग नवदुर्गा, उत्सव प्रेरणेचा.
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का. 8:57 हो चुके हैं. मैं हूँ आरजी प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई. और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज है 10 अक्टूबर शनिवार का दिन और अक्टूबर का महीना बोले तो अपना रंग तो दिखा ही रहा है. सच में अक्टूबर हीट ने माहौल को गर्मा गर्म रखा है और ऐसे में गर्मी में जो ठंडक का एहसास है वो दिलाने वाले हम तो हैं आपको, ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे गीत जो सुनाते हैं. तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. और चलिए, एक बात तो है कि आज हर तरफ तैयारियों का माहौल है क्योंकि आज तैयारी वाला जो दिन है. जी हाँ, कल यानी 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्र फेस्टिवल और कल से पूरा मुंबई शहर, पूरा देश जय माता दी के रंग में रंगने वाला है.

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: 1872 ला जुनागडच्या नबाबाने काठेवाडी सिंह भेट म्हणून दिला आणि प्राणी संग्रहालयात बिग कॅट्सचा प्रवेश झाला. त्याच्या पुढे तर देशभरातले संस्थानिक राजे महाराजे वाघ सिंह चित्ते बिबळे इत्यादी वन्य प्राणी भेटी दाखल देऊ लागले होते.
1: बाघ आणि प्राणी संग्रहालयात प्रवेशासाठी शुल्क आकारावं आणि दुसरा पर्याय होता प्राणी संग्रहालय राणीच्या बागेतून गिरगाव चौपाटी नजीक उपलब्ध असलेल्या अधिक मोठ्या आणि हवेशीर जागेत घेऊन जाण्याचा.
2: श्रोतेहो, अज्ञात मुंबई या कार्यक्रमामध्ये मंदार परांजपे आणि नंदिता पाटकर राणीच्या बागेतल्या प्राणी संग्रहालयाची गोष्ट सांगणार आहे. अवश्य ऐका 8 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान सकाळी 7:45 FM रेनबो आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर. याशिवाय न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर दोन्ही वेळेला. वक्त हो चला है 9:13 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, जहां पर है RJ प्रिया आपके साथ. वैसे तो आप सभी जानते हैं आज है 10 अक्टूबर, कैलेंडर का वो पन्ना जो इतिहास के कई बड़े बड़े सरप्राइजेस से भरा हुआ है. तो आने वाले ये जो वक्त है 10 बजे तक, हम आपको उन इतिहास की सैर कराएंगे जिसे सुनकर आप कहोगे कि अरे बॉस, अब उनको तो मालूम ही नहीं था. देखिए, आज ही के दिन, जी हाँ, 10 अक्टूबर 1846 में वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के सबसे बड़े चांद, जी हाँ, ट्राइटन को खोज निकाला था. मतलब दुनिया नीचे सो रही थी और ऊपर एक नया सितारा चमक रहा था. हाय, और बात जब सितारों की हो तो आज हमें याद आ रही है हिंदी सिनेमा की वो एवरग्रीन मिस्टीरियस और बेहद खूबसूरत उमराव जान यानी रेखा जी की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है. रेखा जी, हमारे श्रोताओं की तरफ से और FM रेनबो के पूरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे. आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये आज भी सबसे बड़ा सस्पेंस है ना. और आप सभी श्रोताओं ने भी सोशल मीडिया पर रेखा जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. उनके फैन फॉलोइंग्स क्या कहे, करोड़ों में है. और सच में रेखा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खूबसूरती की वो अधूरी और मुकम्मल दास्तान है जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है. वो जब कांजीवरम साड़ी पहने, आंखों में गहरा काजल और होठों पर वो सिंदूरी लाली सजाए महफिल में कदम रखती है तो मानो धड़कनें ठहर सी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बेमिसाल खूबसूरती के पीछे छिपा है अभिनय का एक ऐसा समंदर जिसके तह तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं है. रेखा जी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से खुद को ऐसा ढाला कि दुनिया देखती रह गई. घर फिल्म में एक रेप सर्वाइवर का दर्द हो, खूबसूरत फिल्म की नटखट मंजू हो, या फिर उमराव जान की वो आंखें जो बिना बोले ही हजार गजलें कह जाती हैं. रेखा जी की आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है. सच में रेखा जी, आपके हुस्न और हुनर का तो पूरा जमाना दीवाना है. हम हमेशा आपसे, आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप मुस्कुराती रहें और अपनी जादुई शख्सियत से यूं ही हमें प्रेरित करते रहें. रेडियो की पूरी टीम और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको फिर एक बार जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

अभिनेत्री रेखा जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और दिन भर उनकी बातों का, उनसे जुड़ी कहानियों का और इनके गीतों का सिलसिला एफएम रेनबो पर जारी रहेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज वैसे साहित्य जगत और हम सब के बचपन के लिए एक बेहद खास दिन है और उन्हीं लोगों के लिए जो 90s के दौर में पैदा हुए थे, नया नया TV आया था, 80s के बाद की शायद ये बात है। आज जन्मदिन है भारत के सबसे चहेते कहानीकारों में से एक आर.के. नारायण जी का। जब भी आर.के. नारायण जी का नाम आता है तो हमारे जहन में तुरंत एक धुन बजने लगती है, ता ना ना ना ना ना ना। कुछ याद आया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालगुड़ी डेज की। एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसे नारायण जी ने अपनी कलम से ऐसा रचा कि हम सबके दिलों में हमेशा के लिए वो जो शहर है काल्पनिक बस गया। मालगुड़ी डेज की वो मासूम कहानियाँ आज भी हमें उस दौर में ले जाती है ना, जहाँ खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती थी। आर.के. नारायण जी की सबसे बड़ी खूबी यही है, उनकी सादगी। उन्होंने आम भारतीय जीवन को, उसके छोटे छोटे सुख दुखों को इतनी सादगी और खूबसूरती से पन्नों पर उतारा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके किरदारों के दीवाना हो गई। और द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और स्वामी एंड फ्रेंड्स जैसी उनकी रचनाएँ कौन भूला है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर आधारित एवरग्रीन क्लासिक फिल्म गाइड बनी थी, जिसमें देवानंद और वहदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के लिए आर.के. नारायण को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार भी मिला था। तो आज उनके जन्मदिन पर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दो पल चुराइए और याद कीजिए अपना वो बचपन जब खुश होने के लिए किसी स्क्रीन की नहीं बस एक अच्छी कहानी की जरूरत हुआ करती थी।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

सिलसिले में आ गई इस लंबे चौड़े ब्रेक के बाद और 9:45 हो चुके हैं। मस्त मुंबई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आज प्रिया के साथ। और आज का दिन खुशियों का ही नहीं, कुछ यादों का भी है। आज ही के दिन साल 2011 में गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब हमें अलविदा कह गए थे। उनकी गजलें आज भी हमारी धड़कनों को रोक देती हैं।

फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। 9:50 हो चुके हैं और थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं भारत के उस गौरव की जिसने दुनिया में हमारा नाम रोशन कर दिया। आज के दिन 2014 में जब बच्चों के हक के लिए लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, गर्व से मानो सीना चौड़ा हो गया था हम भारतीयों का। और खेल की बात करें तो आज के दिन 1978 में रोहिणी खाडिलकर पहली महिला राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन बनी और 1991 में भारत ने विश्व कैरम चैंपियनशिप भी जीती थी और वो दिन भी था आज ही का, यानी 10 अक्टूबर। यानी दिमाग और उंगलियां दोनों के खेल में इंडिया हमेशा टॉप पर ही रहा है। और एक बात, अगर आप आज अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहे हैं तो कोलकाता के विद्यासागर सेतु को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आज ही के दिन 1992 में इसे जनता के लिए खोला गया था। और वैसे अगर आप घर पर है और टीवी पर जो लाइव मैच देखते हैं ना, उसकी शुरुआत भी आज के दिन 1964 में टोक्यो ओलंपिक के साथ हुई थी, जब पहली बार सैटेलाइट से सीधा प्रसारण शुरू हुआ था। तो ये थी आज ही के दिन की कुछ अहम खबरें, अहम बातें, इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हमने तो आपके साथ शेयर की हैं। कुछ बातें तो बची हैं जिसका जिक्र होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत में। तो चलिए दो गाने आपको सुनाती हूँ और उसके बाद ठीक 10 बजे सुनेंगे आप आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत प्रमुख समाचार और उसके बाद नमस्ते भारत में। इस बार खास मेहमान आपसे मिलने आने वाले हैं, कौन होंगे वो आप गेस करते रहिए और सुनते रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत अब तक के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। मौसम विभाग ने मुंबई महानगर क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोंकण तटीय इलाकों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी 12 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगी। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का 3रा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10:02 हो चुके हैं और आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत। मैं हूँ आरजे प्रिया। कार्यक्रम शुरू हो चुका है नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की। अर्ज किया है, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी छिपाए बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी छिपाए बैठे हैं। न जाने कितने लोग दिल में एक समंदर दबाए बैठे हैं। मत सोच कि तू अकेला है इस अंधेरी रात की जंग में। मत सोच हाँ कि तू अकेला है इस अंधेरी रात की जंग में। यहाँ हर शख्स अपनी ही कहानी की चोट खाए बैठे हैं।

0: जी हाँ, लव यू जिंदगी। आप और हम में से ऐसा कितने लोग हैं जो जिंदगी को लव यू कहते हैं? कभी सुबह उठकर मिरर के सामने खड़े हो जाइए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और कहिए लव यू जिंदगी। बस आज दिन की शुरुआत जो है ना, बड़ी ही जोश के साथ करेंगे। ऐसा हम करते हैं, वाकई में करते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज बात करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर। और आज ये जो दिन है, इसका एक हर दिन की एक थीम होती है, तो इसकी थीम सिंपल शब्दों में बताऊं तो जिन्होंने मानसिक तनाव या बीमारी को खुद झेला है, उनकी बातें सुनना और उसके आधार पर इलाज कैसे कर सकते हैं या इलाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये इस साल की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ पर हम बात करेंगे, उस सेहत की जो दिखती नहीं है पर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। सच में हमारा सिर दुखता है, सर्दी होती है, किडनी फेल होती है, ये होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं या दोस्तों को फ़ोन करके भी बताते हैं कि यार ये हो रहा है, मेरे तकलीफ़ हो रही है, ये दर्द हो रहा है, लेकिन कभी कहाँ है किसी को फ़ोन करके कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हम ये बातें नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्यों? हमारा दिल या हमारा मस्तिष्क ज़रूरी नहीं है? ये इस टॉपिक पर बात करना हमें ज़रूरी नहीं लगता? ऐसा क्यों? तो चलिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में, जी हाँ, एफएम रेनबो के स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर साइकेट्रिस्ट, मानसिक मनोचिकित्सक डॉक्टर शुभांगी पारकर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: थैंक यू प्रिया। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने ठीक कहा, इस विषय पर बात करना बहुत ही जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, बात करना जरूरी है। और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर आपसे ये है कि मानसिक स्वास्थ्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आज के दिन हर जगह दुनिया भर में बात होगी, क्या होता है और ये क्यों जरूरी है?
1: मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यह प्रभावित करता है कि हम जीवन के परिस्थितियों के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस तरह व्यवहार करते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के हर पड़ाव पर मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें जीवन में आने वाले तनावों का सामना करने और उनसे निपटने में, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने तथा उन्हें रखने में, और अपने समाज और समुदाय में सकारात्मक योगदान देने में सहायता करता है। सोच समझकर सही निर्णय लेने में मदद करता है। संक्षेप में, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें केवल मानसिक समस्याओं से दूर रहने में ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित, सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी डॉक्टर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो समझना और उसके बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कि हम कभी कहते हैं कि यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, यार मेरा मूड ख़राब है, बस कोई यूं ही बोल देता है, तो हम कैसे समझे कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हमारी ज़रूरत है? और शुरुआती जो लक्षण होते हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं?
1: प्रिया, ऐसा है ना, जब हमारी भावनाओं और मन की स्थिति की होती है तो यह समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या सामान्य है और कब हमें मदद की ज़रूरत है। अगर आपके पास या आप में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं, जैसे कि अचानक बहुत कम या बहुत ज़्यादा भूख लगना, नींद न आना, अकेलापन और अपने से दूरी बना लेना, शरीर में ऊर्जा की कमी, सुस्ती और थकावट महसूस होना, बेपरवाही महसूस होना, किसी बात से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसा लगना, बिना किसी बीमारी के भी शरीर में लगातार दर्द बने रहता है, इतने ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन करो और कुछ भी नहीं आता है, मन में यह भावना आती है कि अब कुछ ठीक नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मन का अशांत होना, अचानक गुस्सा आना, घबराहट होना, बेवजह चिंता लगना, मिजाज में तेज बदलाव, जिसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, वो आते रहना, किसी पुरानी दर्दनाक घटना को बार बार दिमाग में आते रहना, अजीब अनुभव जैसे कि आवाज सुनाई देना या ऐसी बातें सच मानना जो वाकई में हुई ही नहीं है, ये सब लक्षण है कि मानसिक अस्वास्थ्य हो चुका है।
0: और अगर इस तरह के लक्षण हमें महसूस हो रहे हैं, मैं अपने श्रोताओं से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर पालकर जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए, और आप अगर इस तरह के अनुभव या इस तरह के लक्षण आपको आप में या आपके आसपास अगर कोई है, आपके पार्टनर हैं, घर के कोई मेम्बर हैं, उनमें नज़र आ रहे हैं, तो आप ज़रूर उससे जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और डॉक्टर शुभांगी पालकर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए एक गाना सुनाते हैं जो दिल से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, और मन के स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि अगर मन आपका ठीक ठाक है, हेल्दी है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है।

0: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर शुभांगी पालकर। और आज जब हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं और वर्ल्ड मेडिकल मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष में हम उनसे बातें कर रहे हैं और आप सभी श्रोताओं के सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। अगर किसी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो नोट कर लीजिए 8657661071 पर। तो डॉक्टर, हमें बताइए कि जैसे कि हमने लक्षणों की बात की है कि किस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, तेज़ आवाज़ अच्छी नहीं लगना, रोना और इमोशनल हो जाना, और ये सारी चीज़ें तो है, ये तो लक्षण होते हैं। और जब लक्षणों की बात हम करते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दिनों ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल से इनकी बातें होती हैं, तो क्या इनका असर हमारे दिलो दिमाग पर हो रहा है या नहीं?
1: बहुत अच्छा सवाल है प्रिया
0: जी।
1: बहुत सारी वजह के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर परिणाम होता है, जैसे कोई गहरा सदमा हो, बुरी घटनाएं हो, या शारीरिक मानसिक शोषण हो, तनाव से अपने मस्तिष्क के रसायन जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिसे केमिकल लोचा कहते हैं। आपकी जीवन शैली है जिसमें व्यसनाधीनता हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य के कई तरह से प्रभावित कर सकता है। सुबह उठने ही 6 बजे 4 बजे फोन देखना और दूसरों की तथाकथित परफेक्ट लाइफ से अपनी तुलना करना हमारे भीतर हीन भावना, कॉन्फिडेंस लो कर देती है और कुछ छूट जाने का डर पैदा कर सकती है, जिसे हम फोमो कहते हैं। इससे बचने के लिए दिन की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि स्वयं से करें। सुबह कुछ समय ध्यान, व्यायाम, योग या अच्छे गाने सुना करें। शांत चिंतन के लिए वक्त निकालें। सकारात्मक विचार करें। सोशल मीडिया का उपयोग की समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट तय करें, और यदि रखे कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी किसी के जीवन की पूरी सच्चाई नहीं होती, ये याद रखें। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने की बजाय अपने जीवन की प्रगति पर ध्यान दें। मानसिक शांति इस बात में नहीं आती है कि दूसरों के पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम अपने जीवन में जो है उसे कितने प्यार से, जागरूकता से और संतुष्टि के साथ जीते हैं, उसे कितना एंजॉय करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
0: जी। बिल्कुल, मतलब हम अगर सुबह उठते ही, मैं सच कहूँ तो मुझे भी आदत है कि जब भी आँख खुलती हैं हम सबसे पहले, अब एक ज़माना होता था सबसे पहले हम आजू बाजू में हमारे जो सोते हैं उनको देखते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि हम उठते ही मोबाइल को देखते हैं, कहीं कोई मैसेज छूट ना गया हो, कोई अपडेट, ये इतनी हमें आदत लग गई है। और रील्स को जो हम स्क्रोल करते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो दिलो दिमाग है उतना स्पीड से काम कर रहा है, जैसे टेलीविज़न जब आया था और ढेर सारे चैनल्स बाद में आ गए तो रिमोट कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा था और अब मोबाइल तक पहुंच गया है। और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं तो खुद से करें। और ये मानसिक स्वास्थ्य की जब भी बात होती है तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या चाहेगी कि महिलाओं में जो डिप्रेशन है और ये किस तरह का होता है और इसकी जोखिम भी होती है और महिलाओं में डिप्रेशन कैसे समझा जाए? कि
1: पूरी दुनिया में प्रिया महिलाओं में डिप्रेशन या अवसाद अधिक पाया जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होती है, बल्कि जैविक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों का दबाव कुल मिलाकर उन पर प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में तनाव है,

0: गुण चाहिए, परीक्षा में पास होना है। मासिक धर्म से जुड़े हार्मोनल बदलाव होते हैं। गर्भावस्था, प्रसव और रजोनिवृत्ति जैसे जीवन के हर चरणों में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन कुछ बदलाव महिलाओं में लाते हैं, जिससे उनकी अवसाद की संवेदनशीलता बढ़ती है। इसके साथ ही बड़े आघात, लंबे समय तक रहने वाला तनाव, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां, घरगुती हिंसा, ये बहुत सारे मानसिक कारण महिलाओं के अवसाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विशेष रूप से प्रसव के बाद जो होता है महिला को, वो बहुत संवेदनशील हिस्सा है और इसमें लगातार उदासी, अत्यधिक रोना, निराशा, चिड़चिड़ापन, बच्चों से जुड़ाव में कठिनाई होती है, स्वयं को अयोग्य समझना, नींद या भूख में बदलाव और कभी कभी स्वयं या बच्चों को नुकसान पहुंचाना, ये सब विचार हो सकते हैं।
1: मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो कई बार हम लोग ये कहते हैं कि अरे हमें पीरियड्स नहीं आए थे क्या, हमारे ज़माने में हमारी मम्मी, दादी, चाची को भी पीरियड्स आते थे, उनके भी चार चार, पांच पांच, छः छः, दस दस बच्चे उन्होंने पैदा किए, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेनोपॉज जो आता है आफ्टर 40-35 भी आता है, वो हमारी मम्मी को कभी हमने देखा नहीं, तुम हम लोगों को ही क्यों हो रहा है, नए ज़माने की लड़कियों को ही ये सब क्यों हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने डॉक्टर पालकर जी से सवाल पूछा था कि महिलाओं में आजकल मेनोपॉज की बात होती है, पीरियड्स की तकलीफ की बात होती है, पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टियां दी जाए, ये भी बातें होती हैं, तो हमारे से पहले वाली पीढ़ी हमेशा ये कहती है कि अरे आपको ये सब क्यों हो रहा है, हमने तो 10-10, 20-20 बच्चे पैदा किए, इनको एक भी करो तो तकलीफ होती है। तो इससे मानसिक स्वास्थ्य किस तरह जुड़ा है और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर?
2: ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहले के ज़माने में औरतें अपने घर, अपना परिवार, इनके साथ जुड़ी रहती थी, उसे ही अपनी ज़िंदगी मानती थी। लेकिन आप औरतें भागम भाग करती है, काम के लिए निकलती है, घर परिवार भी संभालना पड़ता है, इसमें क्या हुआ है, उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ चुकी है, यानी कि अपने करियर का भी एक उनके ऊपर तनाव है, घर को संभालना है, बच्चे भी आज जिस दुनिया में रहते हैं उनको भी आगे लेके जाना है, तो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है औरतों के ऊपर, इस सब का प्रभाव हो जाता है। और फिर खाने पीने में बदलाव आ चुके हैं, फास्ट फूड जिंदगी में आ चुका है, शांत मन नहीं रहता है, जहाँ मन को संभालना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, मन रिलैक्स नहीं है, और इसमें सब जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। और औरतें जो दो बार रोल कर रहे हैं, डबल रोल कर रहे हैं, उसमें वो डबल तनाव आते जा रहे हैं, और इसीलिए न आप जीवन शैली स्वस्थपूर्ण संभालते हैं, आपके ऊपर दबाव भी जबरदस्त आ रहे, और इसकी वजह से आज सही माने में औरतों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और उनके स्वास्थ्य पर, उनका सेहत पर, उनका बहुत जबरदस्त परिणाम हो रहा है,
1: मेंटल हेल्थ पे ज्यादा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि हमें तकलीफ है,
2: इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है उनमें।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एक श्रोता है स्मिता पालकर, उन्होंने सवाल पूछा है कि रात के 7 से 8 घंटा स्वस्थ नींद का जो है, इसका मानसिक स्वास्थ्य से कितना संबंध है?
2: जैसे हमारे जिंदगी में प्रिय ऑक्सीजन जरूरी है
1: जी,
2: खाना पीना जरूरी है, पानी तो है ही है, इसके साथ अपने शरीर को और मन को एक रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, और ये जो मिल सकता है वो नींद में ही मिलता है। सिवाय नींद में अपने जो शरीर का या मन का जो भी तकलीफें होती है उसको हीलिंग मिलता है, नींद हीलिंग में बहुत जरूरी है। 8 घंटा नींद हम कहते हैं कि जरूरी है हर इंसान को, लेकिन कभी कभी हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यू नो,

0: कोई लोग 5 घंटे में ही खुश रहते हैं, कोई लोग 8 घंटे से ज्यादा 10 घंटे की नींद मांगते हैं। आपको तय करना है कि कितने घंटों की नींद के बाद आपको ताजा महसूस होता है, ताजगी महसूस होती है। तो ये आपका गणित रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा शरीर और मेरा मन क्या चाहता है, मैं किस तरह अपने आप को शांत और शांत चित्त बनाए रख सकता हूँ।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं की बात हो रही है तो हम पुरुषों पर भी आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से समाज के हर उस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सेहत अच्छी हो ये जरूरी है, पुरुषों में जो मानसिक तनाव होता है उस पर उनका क्या असर होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल की बातें हो रही है तो चलिए दिल पर आधारित एक प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं, आपकी पसंद का गीत।

0: नऊ दिवस करू या देवीच्या नऊ रूपांची आराधना.
1: अहो पण आपल्या आजूबाजूलाही आहेत की कर्तृत्व संघर्ष आणि जिद्दीनं आपलं वेगळं विश्व घडवणाऱ्या नवदुर्गा.
0: कुणी प्रतिकूल परिस्थितीत दोन हात करतय, कुणी आपल्या कर्तृत्वाने नवा आकाश गाठतय,
1: कुणी समाजासाठी झटतय, तर कुणी आपल्या स्वप्नांना नवी दिशा देतय.
0: त्यांच्या संघर्षाची कहाणी, त्यांच्या यशाचा प्रवास
1: आणि त्यांच्या अनुभवातून मिळणारी प्रेरणा.
0: या नवरात्रीत भेटूया अशाच काही प्रेरणादायी स्त्रियांना ज्यांच्यात आहे दुर्गेची शक्ती,
1: कर्तृत्वाची ओळख आणि स्वप्नांना गवसणी घालण्याची जिद्द.
0: हॅशटॅग नवदुर्गा या कार्यक्रमात
1: दिनांक 11 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर सकाळी 11 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या 100.1 FM गोल्ड वाहिनीवर
0: हॅशटॅग नवदुर्गा उत्सव प्रेरणेचा.
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का. और आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं, दुनिया भर में मनाया जा रहा है. और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर शुभांगी पालकर, जो हमारे सवालों का, हमारे मन से जुड़े सवालों का जवाब दे रही हैं. तो मैडम, मैंने जैसे कि इन गानों के उस पार आपसे सवाल पूछा था, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, होती है, पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेगी?
3: लोगों का मानना है कि पुरुष सचमुच मंगल से आए हैं. ओके, वो संवेदनशील नहीं होते हैं, टफ होते हैं, जन्म से टफ पैदा हुए हैं, सक्षम होते हैं. लेकिन हमें याद रखना है कि जहाँ से औरतें आई है उसी पृथ्वी पर आदमी आ चुके हैं. और आदमी आखिर इंसान ही तो है. तो उनको भी मन होता है, उनको भी भावनाएं होती है, उनके ऊपर भी जिंदगी के घटनाओं का असर होता है और उनके मन में दुख होता है. यानी कि ऐसे कहा जाता है कि पुरुष के आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन आंसू होते हैं क्योंकि वो भी तो इंसान है. तो हमें ये समझना है कि वो भी हर जिंदगी के हर अनुभव से जाते हैं, उनके मन में भी वो असर होते रहते हैं और उनके मन में भी दर्द होता है, उनको भी डिप्रेशन होता है, उनको भी चिंताएं होती है, उनको भी जो भी मानसिक बीमारियां है वो उनको भी होती है. लेकिन वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि समाज में उनको बताया है कि भाई आप तो टफ हो, तो अपना दुख भी व्यतीत नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते. तो इसीलिए सभी को ये समझना चाहिए कि अपना दर्द और अपना दुख व्यक्त करे और वो भी मदद ले ले.
2: जी बिल्कुल, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, हम जैसे बड़े होते हैं भाई को कहा जाता है लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो लड़कियों की तरह, और पुरुष को कहा जाता है कि तुम रो नहीं सकते. तो ये जो है ये बचपन से ही दिलो दिमाग में इतना बिठाया गया है, इन शॉर्ट कहा गया है कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो भी इस बात को मानते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि मर्द को भी दर्द होता है और उनको अपना दर्द व्यक्त करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इस पर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर होगा. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने. औरतों की, महिलाओं की बात हो गई, पुरुषों की बात हो गई, बच्चों में और टीनेज जो बच्चे हैं उनमें मेंटल स्ट्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेगी? और उन्हें तो बस पढ़ाई करनी है, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा, हम कहते हैं ज़्यादा होशियार है, हाइपर है हमारा बच्चा, लेकिन इनमें भी एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, और माता पिता इसे कैसे पहचाने?
3: समाज में ये भी बहुत जबरदस्त गलत फहमी है, बच्चे यानी कि मजे, बच्चे यानी कि हंसी खुशी, बच्चे यानी कि खेलना, बच्चों को क्यों चिंता होनी चाहिए, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, ऐसे ख्याल होते हैं समाज मन में. लेकिन याद रखिए, बच्चों और किशोरों में भी चिंता और अवसाद हो सकता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों की समस्याएं छोटी हो सकती है, हमें छोटी लगती है, लेकिन उनके लिए उनसे जुड़ी हुई भावनाएं बहुत बड़ी हो सकती है. उनकी उम्र में पढ़ाई का दबाव है, परीक्षा में अच्छे गुण लाने की अपेक्षा है, दोस्तों के साथ तुलना की जाती है, बुलिंग होता है, सोशल मीडिया और परिवार में तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है. बच्चा हाइपर एक्टिव है, पर क्यों है? कभी कभी हाइपर एक्टिविटी बीमार हो सकती है, लेकिन बहुत बार वो डिप्रेशन या चिंता की भी प्रतिसाद हो सकता है. तो माता पिता को कुछ बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बच्चा पहले की तरह खुश नहीं रहता है, अकेले रहने लगता है, बार बार चिढ़ता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, स्कूल में जाना नहीं चाहता है, और बच्चों में भी नींद कम होने की या भूख में बदलाव आने की समस्याएं दिख जाती है। यदि ये बदलाव माता पिताओं के ध्यान में आए तो बच्चों को रोजमर्रा के जीवन में प्रभावित करने लगे है ऐसा दिखाई पड़े तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाइल्ड सेक्रेटरी यानी कि बच्चों के लिए मनोचिकित्सा के आज नए द्वार खुल चुके हैं और ये बहुत जबरदस्त है। हमारे प्रैक्टिस में हम अगर 10 एडल्ट है तो 2-3 बच्चे आते ही रहते हैं, और आजकल तो बिल्कुल ज्यादा तनाव है क्योंकि स्पर्धा बहुत रह चुकी है।
2: जी बिल्कुल, ये जो कंपटीशन का दौर है इसमें बच्चों पर प्रेशर आना जाहिर सी बात हो जाती है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर उन पर होता है, बस वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं जो टीनेज बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। एक सवाल हमारी जो लिसनर है शुभलक्ष्मी जी है, उन्होंने पूछा है कि अगर हमारे जान पहचान वाले रिलेटिव्स अगर हमको मेंटल स्ट्रेस देते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है एक्चुअल में ये, तो हमें उस मेंटल स्ट्रेस से दूर कैसे होना है?
3: अब बहुत अच्छा सवाल है, आम सवाल है, आम जिंदगी में इस चीज का अनुभव आता है। पहले याद रखिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में साथ में जो होते वो अपने ही होते हैं, और हमारी जो रिएक्शन होती है वो अपनों के साथ ही ज्यादा होती है। जहाँ अपनी पसंद उनकी पसंद, हमारे विचार उनके विचार, इसमें बहुत संघर्ष हो सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि भाई ये लोग तो हमारे अपने हैं, उन्हें भी ऐसा ही समझना है कि ये लोग तो हमारे अपने हैं, तो हम इनसे कितना परेशान हो इसकी मर्यादा हमें लगानी है। अगर हम वो जो कहते हैं उसमें सही तौर पर योग्य तौर पर अगर बदलाव ला सके तो ले आए। को ज्यादा हमें स्टबन नहीं होना चाहिए, अगर वो जो कह रहे हैं वो सही है तो, अगर वो जो कह रहे हैं वो चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो हमें उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि कब हम ठीक तरह पेश आ सकते है और कब हमें अपने आप को संरक्षण देना है और उन्हें इग्नोर करना है। बहुत बहुत जरूरी है हमें ये सोचना, हमें रिश्ते बिगड़ने नहीं देने हैं, लेकिन अपने आप को बचाना बिल्कुल हमारा हक बनता है।
2: बिल्कुल, यानी कि इग्नोर तो नहीं करना है पूरी तरह से, बट अपने ऊपर आने नहीं देना है,
3: उन्हें इग्नोर ना करें। वो जो कहते हैं वो बातें अगर आवश्यक ना हो, अगर महत्वपूर्ण ना हो तो उन बातों को इग्नोर करो, उन्हें अपनी जिंदगी में उतना ही महत्व देना है, बातों को इग्नोर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारी आरजे हैं, आरजे अवनी भट्ट, उन्होंने भी एक सवाल पूछा है जिस पर हमने बात तो की थी। उनका यही कहना कि सोशल मीडिया से भी क्या मेंटल हेल्थ पर असर होता है?
3: बहुत ज्यादा होता है। आजकल हम अपने सगे वालों से, फ्रेंड से ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहते हैं, वहां इंटरैक्ट करते हैं, तो वहां की बातों का स्पर्धात्मक या कॉम्पिटिशन हो जाता है।

0: हम रूठ जाते हैं अपने आप से कि जो लोगों के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है दिखाने के लिए, तो इसका असर होता है। सोशल मीडिया अच्छा टेक्निक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी अच्छाई के लिए करें। उसमें बेहतरीन ऐसे कुछ दिखाया जाता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी है या नहीं करनी है जिससे हमें तकलीफ हो। सोशल मीडिया की अच्छी बातों का हमें हमारे जिंदगी उभारने के लिए उपयोग करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया पर कई सारी अच्छी जानकारियां भी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंची होती, और जब आती है तो खुश होना चाहिए, लेकिन कई सारी ऐसे हमारे मन के विरुद्ध भी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर देखकर दिन भर हम उसी में उलझे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे श्रोताओं भी आपसे मैसेज कर रहे हैं और एक सवाल पूछा है दत्तात्रेय जी ने कि समाज में छोटी छोटी वजह से आत्महत्या बढ़ती है, ऐसे मामले सामने आते हैं, तो का उपाय क्या है? जी बिल्कुल, मैं ये पूछना ही चाहती थी कि कभी कभी हम देखते हैं कि 10-12 साल के बच्चे भी सुसाइड टेंडेंसी रखते हैं, और इसके पीछे की वजह क्या है?
0: ये जो हमारे जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में समस्याएं है ही है, बड़ी छोटी समस्याएं है ही है, लेकिन उसमें हम उसके साथ किस तरह पेश आते हैं, कैसे उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह उनको झेलते हैं या उनके साथ हम लड़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन सब चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं और हम निराशा में जाते हैं, ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा शायद, यू नो, जिसमें कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं, यू नो, हमारा सब कुछ खो चुका है, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस वजह से लोग आत्महत्या करते हैं उसी वजह के साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जूझते हैं, जो लड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। यानी कि निगेटिव इवेंट, घटनाएं जिंदगी में काफी नहीं है कि हम आत्महत्या करें, निगेटिव इवेंट के साथ लोग लड़ते हैं और अपने जिंदगी को आबाद कर लेते हैं, तो हमें सोचना है कि हमें बर्बाद होना है या आबाद होना है, उसी पर निर्भर करेगा कि हमारी जिंदगी की जो कठिनाइयां है, समस्याएं है, उसके साथ हम किस तरह पेश आते हैं।
1: यानी लड़ना, जिंदगी की समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। और एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि रोजमर्रा के तनाव तो होते ही है सब में, तो क्विक हैक जो कहते हैं ना 2 मिनट का, जिस तरह की अभी हमारे लिसनर्स जो है वो अभी कर सकते हैं, अगर उन्हें उनमें से किसी को मानसिक तनाव है, तो सबसे पहली बात तो ये है, आपने बताया था कि हेल्प ले, मदद ले, लोगों से बात करें।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा कौन सा 2 मिनट का क्विक हैक है जो करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है थोड़े पल के लिए बेहतर होगा? आप जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनाती हूँ। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जहाँ पर है आरजे प्रिया आपके साथ और मशहूर साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक डॉक्टर शुभांगी पालकर हमसे बात कर रही है दिल की बात।

0: डॉक्टर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 10:53 हो चुके हैं, हमारे पास वक्त वैसे काफ़ी कम है, लेकिन जैसे कि इस गीत के उस पार हमने आपसे पूछा था कि क्विक 2 मिनट हैक जो हमारे लिसनर्स अभी इसी वक्त कर सकते हैं, अगर वो इन सारे लक्षणों को समझ ले कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे हमें थोड़ी शांति मिले।
1: तनाव कम करने की कोई जादू नहीं है, लेकिन सोच का मामला है। पहली तकनीकी है, धीमी सांस ले लो। जब भी तनाव महसूस हो, आराम से बैठिए
0: जी,
1: नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर आराम से बाहर छोड़िए। वही ध्यान दे देना, ऐसा 1-2 मिनट तक आप करें, इससे शरीर और मन को हल्का और शांत होने में मदद मिलती है और मन सही सोचना शुरू करता है। दूसरी तकनीक है खुद से सकारात्मक बात करना। यह सीने में हाथ रखे आमिर खान की वो बात याद करें,
0: All is well.
1: Okay, इस तरह आप अपने आप को बताते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दे रहा हूँ और बाकी परिस्थितियों को समझदारी से संभालूंगा। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि उनका सकारात्मक सामना करने का भरोसा अपने भीतर जगाना, ये बहुत जरूरी है। तो अपने सीने पर हाथ हमेशा रखें जब आप तकलीफ में हो, और अपने आप को ही बता दीजिए कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इससे सारी पॉजिटिव निर्णय आपके मन में आ जाएंगे। और जब भी थक जाते हो परेशानी से, समस्याओं से, खुद को छोटा सा विराम देना, जिस तरह हम गाने सुनते सुनते विराम दे रहे हैं और लोगों को बहुत

0: जगा रहे हैं, उनको शांति मिले ऐसी बातें कर रहे हैं, खुशी हो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये हमें हमारी आम जिंदगी में करना है। एक अच्छा सा गाना याद करना है, अपना प्यारा पेट को याद करना है, ऐसे सोचना है कि मेरा कैट या मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता मेरे साथ है और मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, यानी जब भी हमारे जो लिसनर्स अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ध्यान रखिए मैम ने जो कहा है कि अगर तनाव महसूस हो तो शांत बैठिए, सांस जो है हमारी बेहद ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है, ब्रीदिंग कीजिए और ऑल इज़ वेल तो है ही, मतलब कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। श्रोताओं, अपने आंसू को छिपाने की या झूठी मुस्कान पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने दिल का बोझ अपनों से शेयर कीजिए। याद रखिए इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है, आपकी बातें सुनने के लिए, आपको समझने के लिए कोई ना कोई हमेशा मौजूद है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए और बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा कैसे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर शुभांगी पालकर जी का, जिन्होंने हमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू। देखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक बार ही मिलती है और बहुत अनमोल है। अपने मन का ख्याल रखिए, अपनों के मन को सुनिए, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की नींव है। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच। और आप सभी श्रोता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। इसी के साथ आरजे प्रिया को दीजिए इजाजत, क्योंकि आरजे शैलेंद्र अब स्टूडियो में आ चुके हैं। बेहद जल्द आपसे मिलने का वादा करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर से बहुत दिल से शुक्रिया।
0: नमस्कार।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात अदीस अबाबा में इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की। एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अफ्रीकी देशों से वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। और समाचार में आगे, कोच्चि में बना तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल सोमवार को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन करेंगे। और समाचार के अंत में खेल समाचार। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर इतिहास रच दिया है। असम के 43 वर्षीय पुतुल ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, किम छो, सस्रियकाल, आणी मुंबई कसका झकास ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। सैटरडे का दिन है, वीकेंड की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और ये कोई नॉर्मल वीकेंड नहीं है। शनिवार रविवार की शनिवार को कुछ लोगों को काम करना पड़ेगा हाफ डे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए या फिर किसी किसी को छुट्टी भी होगी। शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को शुरू हो जाएगा उमंग और उत्साह का पर्व नवरात्रि। तो इस बार का आने वाला सोमवार जो है वो बहुत शुभ है क्योंकि सोमवार को आगमन होगा दुख और कष्ट हरने वाली माता रानी का। इसी खुशी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन को आगे बढ़ाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 11:08 होने वाले हैं। आप सुन रहे हैं स्टेशन ऑफ अ नेशन एफएम रेनबो, कार्यक्रम है ब्रेक फ्री और मेरी आवाज आप पहचानते हैं ही, मैं हूं आरजे शैलेंद्र। तो चलिए ब्रेक फ्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माता रानी का जिक्र किया है तो उन्हीं का एक गीत जो है वो इस गीत के साथ कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। स्टेडियम एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र, दिल से दिल तक।

दिल तो बच्चा है जी का ये सॉन्ग मोहित चौहान की आवाज़ और दिल के बचपन को और दिल के बच्चे को हमेशा जीवंत रखिए, अपने ऊपर जो है उम्र की चादर जो है और मैच्योरिटी वाला जो बोझ है थोड़ा सा हमेशा कम रखिए। ऐसा ही कुछ मैसेज इस फिल्म से आपको मिलता है और साथ ही साथ इस गीत में भी जो है वो हल्का फुल्का म्यूजिक आपको नजर आता है। वेलकम बैक एफएम रेनबो पर ब्रेक फ्री

सुन रहे हैं आप। और आजकल दोपहर में जो है ना, बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे धूप का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। अक्टूबर हीट है, और सच कहूँ तो जैसे ही सोमवार आएगा, ये चिलचिलाती धूप जो है वो सोमवार के शाम को, जब ये चिलचिलाती धूप ठंडक में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ हर तरफ जो है वो नवरात्रि और गरबों का माहौल बनेगा। इसके बारे में और भी आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, नवरात्रि से जुड़ी कुछ बातें। लेकिन फिलहाल नवरात्रि की बात छेड़ी है, गरबे की बात छेड़ी है, तो उसी पर एक खूबसूरत सा नगमा एफएम रेनबो पर। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, जल्द ही लौट कर आऊँगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

एफएम रेनबो पर ब्रेक फ्री कार्यक्रम का आनंद लीजिए दोस्तों। ठीक 11:30 पर आप हमारा दिल्ली से कार्यक्रम स्टम्प्ड सुनेंगे और उसके बाद 11:45 को फिर मैं आपसे जुड़ूंगा ब्रेक फ्री में।

हाँ वेलकम बैक दोस्तों, बुद्धू सा मन कुमार एंड सन्स इस फिल्म से ये गीत अमाल और अरमान मलिक इसे गा रहे थे। अभिरुचि चांद इन्होंने इस गीत को लिखा था और कंपोजर अमाल मलिक। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक फ्री कार्यक्रम में, बातें जहां जो है मैं आपसे वीकेंड में मिलने आया हूं। सैटरडे है आज और ये सैटरडे की सुनहरी दोपहर की ओर हम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सच कहूँ तो सोमवार से नवरात्रि में जो माहौल बनेगा तो सबको जो है वो बड़ी राहत और बड़ा सुकून महसूस होने वाला है। नवरात्रि में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रंग बिरंगी पोशाक, युवक युवतियाँ शाम होते ही आपको नजर आने लगती है। नवरात्रि में सकारात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण कारण है नृत्य। नृत्य अपने आप में एक रिफ्रेश करने वाली कला है। ये एक ऐसी विधा है जो ऊर्जा का नवसंचार करती है। तो इस नवरात्रि जो है किसने किसने क्या क्या विशेष तैयारियां शुरू की है, अब जाहिर सी बात है आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे जानना चाहूंगा और आपसे पूछ रहा हूं कि आपने क्या नवरात्रि की विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। मैसेज या कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर्स है 4515-4132 या फिर 4515-4133 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के लिए 8657-66-1071 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप पर संदेश भेजे हैं, उन सभी संदेशों को मैंने देखा भी है और आपका जिक्र कार्यक्रम में आगे ज़रूर करूँगा। तो कहीं मत जाइएगा, कुछ प्यारे से नगमे और नवरात्रि की बात छेड़ी है, माता रानी के बारे में कुछ जानकारी भी आपको दे रहा हूँ, नवरात्रि से जुड़ी बातें भी है। तो अगला गीत शेरा वाली को डेडिकेट करते हैं इस आने वाले नवरात्रि के उत्सव पर। स्टेडियम एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, दोपहर के 12:35 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की सही

आज में खुलासा हुआ है कि फ्लाइंग दुबई की घटना में ओमान के सह पायलट द्वारा सुनियोजित तरीके से आतंकवादी साजिश हुई थी। यूएई के अटर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने इस घटना की लोक अभियोजन जांच के बारे में जानकारी दी। मामले की जांच जारी है। और समाचार के अंत में, ठाणे जिले में एक सरकारी आश्रम स्कूल के 11 वर्षीय आदिवासी छात्र की कथित तौर पर चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई मौत के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य और दो अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे, और म्यूजिक कैफे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक झिंझड़ी। 12:07 का समय, मैं फिर से आ गया हूँ म्यूजिक कैफे कार्यक्रम लेके। और म्यूजिक कैफे में खूबसूरत सा संगीत तो रहता ही है, ठीक उसी तरह जैसे ये गीत था उड़जा काले कावा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज, फिल्म गदर से आपने ये गीत सुना। और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले या फिर समाचार के पहले मैंने जो आपसे बात की थी कि नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और आप किस तरीके से आपने कुछ विशेष तैयारियां नवरात्रि की है, आपके कुछ संदेशों के जिक्र करने की भी बात की थी, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोगों ने संदेश भेजे हैं। लेकिन जिन्होंने नवरात्रि की तैयारियों के बारे में बात की है, राजेंद्र परमार साहब है, कहते हैं कि घट स्थापना की जो है वो तैयारी पूरी तरीके से हमने की है या हो चुकी है। ठीक उसी तरह दीपा पालकर मैडम जो है वो कह रही है कि पारिवारिक सेलिब्रेशन रहेगा और जो है वो पंडाल में अक्सर आना जाना जो है वो होता रहेगा। कार्यक्रम में और भी कई लोग जुड़े हैं, जिसमें यशवंत आड़मुठे है, प्रमोद चिंचोलकर साहब है, अंजू मैडम है अंधेरी ईस्ट से, और कई सारे लिसनर ने जो है अपने संदेश भी मुझ तक भेजे हैं। अजय साखरे इंदौर से उन्होंने अपना संदेश भेजा है, अशोक पाटिल वर्ली से है, संजय दर्शन है, सभी लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है और कार्यक्रम में गीत भी जो है वो बहुत सुहाने और प्यारे बज रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे संदेश है लेकिन सबके संदेश पढ़ना टाइम की कमी की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नवरात्रि की बातों में जो है वो कुछ जानकारी आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। अगर हम गरबा की बात करें तो गरबा ये शब्द जो है वो संस्कृत के गर्भ या गर्भा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गर्भ या सृजन की शक्ति। गर्भो जो है वो एक मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, गुजराती में गर्भो जिसे मिट्टी के घड़े को कहते हैं। पारंपरिक रूप से इस नृत्य के केंद्र में मिट्टी का एक छिद्र युक्त घड़ा रखा जाता है जिसे गर्भो कहते हैं, और इस घड़े के अंदर एक जलता हुआ दीपक या गर्भादीप जिसे कहते हैं वो रखा जाता है। ये जलते हुए दीपक गर्भस्थ जीवन, ब्रह्मांड की ऊर्जा और दिव्य शक्ति, माता शक्ति या माँ दुर्गा का आराधना का प्रतीक माना जाता है। इससे जुड़े और भी कुछ पहलू हैं, उन्हें भी जानते हैं, लेकिन माता जी का जिक्र हुआ है तो अगला गीत जो है वो उन्हीं के लिए समर्पित है। और साथ ही साथ म्यूजिक कैफे में आपके लिए क्या लेकर आया हूँ वो भी बताऊंगा, लेकिन इन खूबसूरत नगमों के बाद। चलिए जल्द ही लौट कर आऊंगा FM रेनबो पर। मैं RJ शैलेंद्र, दिल से दिल तक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और क्या अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना एफएम रेनबो पर। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस फिल्म से बातें जो है वो चल रही हैं आपसे, और धीरे धीरे वक्त भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। म्यूज़िक कैफे कार्यक्रम में म्यूज़िक की भी बात होगी, लेकिन पहले जिस बातों का जिक्र मैंने किया है उसे भी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। उल्लास और उमंग का पर्व नवरात्रि की तैयारियों के लेकर कुछ लोगों ने फिर से हमें संदेश भेजे हैं, जिसमें रजनीकांत पाटिल है, शुभलक्ष्मी मास्तिकर है, वैदेही मैडम है, सुरेश वैष्णव, फिरोज भाई, विजेंद्र घाटोल, इनके संदेश भी हम तक पहुंचे हैं। गरबा नृत्य के परंपरा के बारे में अगर बात करें तो प्राचीन काल में महिलाएं जो है वो उस मिट्टी के उस घड़े के इर्द गिर्द गरबो यानी चारों ओर गोलाकार घेरे में ताली बजाते हुए लोकगीत गाते हुए परिक्रमा करती थी। शुरुआत जो है वो धीमी गति से होती थी और धीरे धीरे लय और गति तेज होती जाती थी। अब गरबा के अलग अलग प्रकार भी हैं, जैसे डांडिया रास, ये सारे नृत्य है जो गरबा के अंदर आते हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि यूनेस्को ने जो है वो यूनेस्को ने गरबा को अमृत सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के सूची में शामिल कर दिया गया है। गरबा जो है अब हमारी जागतिक धरोहर हो चुका है। तो ऐसे इस पारंपरिक नृत्य को जो गुजरात के छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक पहुंचा और शहरों से इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ये आज जागतिक धरोहर की सूची में शामिल हो चुका है। कुछ प्यारे से नगमे आपके लिए लेकर आया हूं, और आज म्यूजिक कैफे में एक ऐसे किसकी बात करने वाला हूँ वो भी जल्द ही बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ नगमे आपके लिए एफएम रेनबो पर। जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत गीतों के बाद।
1: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलम वुशुंडे शिर शंखम संदधतिं करैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषणम

वेलकम बैक पल पल दिल के पास, अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर की आवाज में ये गीत उनके लिए जिनके दिल के पास पल पल कोई ना कोई रहता है, कोई खास उनके दिल के पास पल पल दस्तक देता है। 12:35 का समय, एक बार फिर स्वागत है आपका 107.1 की फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और हम जो है वो म्यूजिक कैफे कार्यक्रम के लगभग जो है वो बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने म्यूजिक कैफे के विषय के बारे में आपसे बात की नहीं है। दरअसल आज काफी लोगों के संदेश भी आए हैं। आज उस अदाकारा का जन्मदिवस है जिनका व्यक्तित्व जो है वो हमेशा आकर्षण और गुढ़ता का केंद्र रहा है, जिनकी खूबसूरती और अदायगी ने लोगों को पिछले 5 दशक से सम्मोहित करके रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिनेत्री रेखा की। म्यूजिक कैफे में आज उनके कुछ गीतों का आनंद लेते हैं और उनके जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू भी जानते हैं। एफएम रेनबो म्यूजिक कैफे म्यूजिकल जर्नी, मेरे यानी आरजे शैलेंद्र के साथ। और रेखा जी पर

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और कोरस मिलकर ये गीत गा रहे थे। ऑफ कोर्स लता जी ने और किशोर दा ने ये गीत को बहुत खूबसूरती से निभाया है, लेकिन जिस तरीके से रेखा जी और अमिताभ सर ने इसे इनैक्ट किया है या फिर इसको अभिनीत किया है, ऐसा लगता है कि सच में ये लोग ही ये गीत गा रहे हैं और उनकी एनर्जी और उनकी बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हम देखें, इस गीत को अगर देखें तो ये जादू ही है, स्क्रीन पे जादू हो गया ऐसा लगता है। और बिल्कुल ये नहीं लगता कि कोई पार्श्व गायक जो है वो इस गीत को गा रहा है। वैसे ही ऑन स्क्रीन जादू का मज़ा जो है वो कुछ ही जोड़ियों के नसीब हुआ है, उनमें से एक रेखा जी की और अमिताभ सर की जोड़ी। म्यूज़िक कैफे में आज रेखा जी के ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलू आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सारे लोग या फिर उनका लोकप्रिय नेम, जिसे लोकप्रिय नाम रेखा, जिसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो भानुरेखा गणेशन है। भानुरेखा गणेशन, उनका जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ। उनके पिता जो है वो अभिनेता जेमिनी गणेशन और उनकी माता जी पुष्पवल्ली थी। अपने माँ के कहने पर, सच ये आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने अपने माता जी के कहने पर 14 साल की उम्र से अपनी स्कूली शिक्षा छोड़कर पूर्ण रूप से अभिनय में करियर करने की ठान ली और उन्होंने अभिनय की राह पकड़ ली। इस डिसीजंस की, इस फैसले की वजह से उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा भी छोड़नी पड़ी और स्कूली शिक्षा के बाद जैसे उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई, कैसे उन्हें जो है वो पहली फिल्म मिली और उनके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई, जानते हैं कुछ खूबसूरत उन्हीं पे फिल्माए हुए कुछ खूबसूरत गीतों के बाद। और हाँ, आपके संदेश और आपकी कुछ फरमाइशें भी आई है, जिनमें से कुछ लोगों की फरमाइश प्ले करूँगा जल्द ही, जिनमें जो है वो विजेंद्र घाटोल साहब है, काजल कक्कर मैडम की चेंबूर से फरमाइश मुझ तक पहुंची है। फिलहाल इन की फरमाइशें प्ले करूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रेखा जी के बारे में जानते हैं और उनके खूबसूरत गीतों का, उन पे फिल्माए हुए खूबसूरत गीतों का आनंद लेते हैं। आरजे शैलेंद्र के साथ म्यूजिक कैफे दिल से दिल तक।
1: हाँ? क्या कहा?

वेलकम बैक दोस्तों, 1:09 का समय हो चुका है राष्ट्रीय मराठी समाचार के बाद, और इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आपसे मिलने आया हूँ FM रेनबो पर हिट हॉट कार्यक्रम में। आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम है, आपकी फरमाइशें प्ले करूँगा। साथ ही साथ रेखा जी का जन्मदिन है, तो उनकी कुछ जानकारी भी, उनके ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलू भी आपके लिए लेकर आया हूँ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू, जो इंती गुट्टू ये फिल्म उनकी 1958 में जो है वो रिलीज़ हुई थी, और इसी फिल्म के साथ साथ रंगुला रत्नम 1966 में, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने जो है वो एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपने काम की शुरुआत की थी। लेकिन अगर एक हीरोइन की तौर पर या फिर मुख्य भूमिका की बात करें, तो उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999, इस फिल्म से उन्होंने, कन्नड़ फिल्म से अपने फिल्मी करियर की मुख्य नायिका के रूप में शुरुआत की थी। और हिंदी फिल्म की बात करें तो 1970 में उनकी सावन भादो, इस फिल्म से मुख्य नायिका के रूप में शुरुआत हुई थी। उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में सावन भादो इस फिल्म ने स्थापित किया, और उसके बाद उनकी कई फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसमें कॉमेडी फिल्म खूबसूरत है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 1980 में, खूबसूरत इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद कई फिल्में हैं, बसेरा है, एक ही भूल, जीवनधारा, अगर तुम ना होते, इन सब भूमिकाओं ने उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया। लेकिन ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनकी भूमिकाएं जो है वो अजरा अमर हो गई, जिसे रेखा जी ने निभाया है। ऐसे ही इसी एक फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आया हूँ, और काफ़ी लोगों ने इस गीत की फरमाइश भी मुझ तक भेजी है, जिसमें दीपा पालकर मैडम है और भी कई सारे लिसनर हैं, उनकी ये फरमाइश है। और आपकी जो हिटहॉट की फरमाइशें हैं वो भी प्ले करूँगा, साथ साथ रेखा जी के गीत भी कार्यक्रम में जारी रहेंगे। बने रहिए FM रेनबो पर, जल्दी लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

0: अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ये कुमार सानू और अनवर मिलकर इस गीत को गा रहे थे और इस गीत की फरमाइश जो है वो गोप परिवार झारखंड से इन्होंने हम तक ये फरमाइश पहुंचाई थी। कुछ नए नाम, कुछ नए लिसनर्स भी जो है वो फरमाइश भेजते हैं और कभी कभार उनकी फरमाइश को तवज्जो देना भी ज़रूरी रहता है। रेगुलर लिसनर्स के साथ साथ नए कुछ लिसनर और साथ ही साथ आज जो है वो रेखा जी का जन्मदिन पर उनके कुछ गीतों की फरमाइश भी आई है, जिसमें दत्ता केदार है पंढरपुर से, उन्होंने एक रेखा जी के आइकॉनिक गीत की जो है फरमाइश भेजी है, उस गीत को प्ले करने वाला हूँ। और समय की थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि ठीक 1:30 पर यानी 1:30 आप जो है वो राष्ट्रीय मराठी समाचार सुनेंगे। 1:30 से 1:40 तक राष्ट्रीय मराठी समाचार के बाद मैं फिर आपसे जुड़ूंगा कार्यक्रम हिट हॉट में, आपकी कुछ फरमाइशें फिर से आपके नज़र करूंगा। और कुछ संदेश भी पहुंचे हैं और इन संदेशों को जो है ज़रूर जिक्र होगा इन संदेशों का, बस आप कार्यक्रम में जुड़े रहिए, बने रहिए। और अगला गीत रेखा जी का वो आइकॉनिक गीत जिनकी, जिस गीत की वजह से, जिस भूमिका की वजह से जिन्हें आज भी लोग जो है वो उमराव जान के नाम से जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: दुश्मनों ने

वेलकम बैक दोस्तों, मार गई मुझे तेरी जुदाई। जुदाई इस फिल्म से ये गीत है, रेखा जी और जितेंद्र इन पे ये फिल्म आया हुआ गीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इनका संगीत। इस खूबसूरत गीत की फरमाइश हम तक विजय घाटोल, जी हाँ उन्होंने हम तक ये गीत की फरमाइश भेजी थी, अकोला से हमारे कार्यक्रम में वो जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच विजय जी आपके इस फरमाइश के लिए। समय की कमी के कारण ज़्यादा बात न करते हुए रेखा जी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 90 और 2000 के बाद भी उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया, जिसमें 1996 की खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, 2000 के दशक के दौरान उन्होंने जुबेदा लज्जा में उनकी सहायक भूमिका थी, और साथ ही साथ कोई मिल गया वो कृष के सिक्वल में भी उन्होंने काम किया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। एक्टिंग के अलावा 2012 से 2018 तक वे राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी है। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिसमें जो है वो 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। ऐसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री, नृत्यांगना और पूर्व सांसद को आकाशवाणी परिवार

की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। उनके कुछ मधुर नगमे आपके लिए लेकर आया हूँ और उनकी बात हुई है तो उनका ये नगमा जो है वो आपको सुनाए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। और स्पेशली ये गीत हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगा। विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आकाशवाणी मुंबई, FM रेनबो, दिल से दिल तक।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत।
1: वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, हमको, हम सभी को, भारतीयों को रेखा जी से प्यार है, मोहब्बत है। इस गीत के बाद स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 1:55 और मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। जाते वक्त भी जो है वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, आपको एक गीत ज़रूर सुनाना चाहूँगा। और जब भी जाता हूँ आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ, आप सभी लोग अच्छा देखिए, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताए जिनके साथ आपको पता नहीं चलता। और आपसे इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि पिछली 8 तारीख को महान कलाकार नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें अगला गीत डेडिकेट करना चाहूँगा और साथ ही साथ आने वाले नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस नवरात्रि के पर्व को जो है वो खुशियों से मनाइए। ये नवरात्रि पर्व आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और नई चेतना और नई उमंग लेकर आए। अगले गीत को नाना सर को डेडिकेट करने की वजह, क्योंकि उनके जैसा कलाकार होना फिर से ये नामुमकिन है। और अगला गीत उन्हीं पे फिल्माया गया हुआ है। इस गीत के साथ नवरात्रि का जो है वो आपको आनंद देने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही साथ उन्हें जो है वो स्मरण भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गीत को उन्हीं के ऊपर, नाना पाटेकर सर के ऊपर फिल्माया गया हुआ। सो कीप लिसनिंग, कीप लविंग एफएम रेनबो एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिल से दिल तक।

0: from the Red Fort said the government is committed to enhance sports ecosystem.
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं.
0: With 85 medals in the recently concluded Asian Games, India finished fourth with a spectacular performance. Target Olympic podium top national sports policy, which align with the national education policy, Fit India movement. There are several initiatives by the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police makes elaborate security arrangements amidst call for protest at Jantar Mantar, detain some individuals planning to participate. Rail and metro services partly affected in national capital. BJP accuses opposition of weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. Defence Minister Rajnath Singh says India is closely monitoring neighbourhood and global security developments, reiterates armed forces are undergoing major transformation under Atmanirbhar Bharat vision. India slams Pakistan at UN General Assembly for spreading lies and falsehoods about Jammu and Kashmir. And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित. भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है. उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की. और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान. अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं. नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है.
4: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं. किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे.
3: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है.
5: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए.
3: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे. एक रिपोर्ट.
6: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है. वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी.

0: रहेगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
3: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
5: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
6: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारे साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
5: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
9: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
8: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 4th स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और

और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्ते, आपने ट्यून किया है 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। शाम के 5:02 और 40 सेकेंड हुए हैं। हमारी प्यार भरी जिंदगी के कुछ नए पुराने आयाम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं हम लव यू जिंदगी प्रोग्राम में, आज शनिवार की शाम आकांक्षा के साथ।

0: साया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू दुनिया।

0: ओ ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना।
1: रामा दुश्मन है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत शरारत भरे हैं, या फिर ऐसे हैं कि बस मस्ती मजाक से भरपूर हैं। और कभी कभी कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जो बस दिन भर मस्ती मजाक करते रहते हैं, बहुत जिंदा दिल से होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन दिन भर कुछ नहीं बोलते, बस अपने आप में खोए रहते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये जो हालात है ना, दोनों के, जो मस्ती मजाक कर रहा है इंसान और जो बहुत खामोश सा है, ये दोनों जो हालात हैं ये अलग अलग हैं। और उन दोनों व्यक्तियों के जो शख्सियत है वो अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है, और तो और उनकी मानसिक स्थिति भी अलग है। आज मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ, दरअसल आज है 10 अक्टूबर और आज का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घर में रिश्तों की बातें सुनते हैं, ऑफिस में हमारे जो सहकर्मी होते हैं उनकी बातें शिकायतें सुनते हैं, लेकिन कभी हमारे ही दिल की बातें या शिकायतें सुनते हैं हम? नहीं ना। दुनिया भर का शोरगुल हमारे कानों पर दस्तक देता है, लेकिन अपने ही दिल की सिसक हम सुन नहीं पाते हैं। सुनिए कभी अपने ही दिल की।

इसलिए सुनना चाहिए हमारे भी दिल की। अक्सर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने को हम दीवानापन या पागलपन का नाम देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना यानी डिप्रेशन होना या तनाव होना, अकेलापन महसूस करना, एंग्जाइटी फील करना, तो ये कोई कमज़ोरी या बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे बुखार आना, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे बुखार हम सबको आता है, और जब मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ने लगता है तो उसके इलाज के साथ वो बेहतर हो जाता है। शरीर के इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें चोट लगती है या ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, बुखार आता है। और जब दिल दिमाग पर टेंशन बढ़ जाता है, कुछ बोझ सा लगने लगता है, तो हम काउंसलर के साथ डिस्कस करते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो काउंसलर के पास जाकर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढना बहुत ही आम बात है। तो इसके लिए अगर कोई कहे कि आप बहुत शांत रहते हो, बहुत अकेलापन आप महसूस करते हैं, तो काउंसलर के पास जाओ तो बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। या फिर ये भी नहीं हम सोच सकते कि इस दोस्त ने हमें ऐसा बोलकर हमारा दिल तोड़ दिया है। तो ये दिल टूटने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ दिल पर बोझ है जिसे हम काउंसलर के पास जाकर डिस्कस करके कम करते हैं, है ना?

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम में। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो उस उपलक्ष में हम बात कर रहे हैं हमारे दिल की, हमारे मन की, और उस पर जो बढ़ता बोझ है उसकी, उसे हम तनाव भी कहते हैं, टेंशन्स भी कहते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। लेकिन उसमें सफ़र तो हमारा दिल ही करता है, और हमारे इस प्रोग्राम के सफ़र में हम दिल के सफरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो उसकी सफरिंग है ना दिल की, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना, चाहे आप कंप्यूटर पे हों या फिर मोबाइल पे हों, तो वो जो स्क्रीन टाइम आज के दौर में हमारा वो है, बढ़ता जा रहा है, और अपनों को वही वक्त हम नहीं दे पा रहे हैं, बस स्क्रीन पर बिता रहे हैं। रिश्तों में कम वक्त देने से हम में बातचीत कम भी हो गई है। हम फैमिली में आते हैं तो भी चार लोग हैं फैमिली में, तो वो चार अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से अकेलापन भी बढ़ रहा है, और ओवर थिंकिंग से हम हमेशा तनाव में रहने लगे हैं। चुप रहने से टेंशन कम नहीं होती, हाँ, लेकिन हम अगर टेंशन बांटते हैं, कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ, दोस्त के साथ, अपनों के साथ, हम वही टेंशन बांटते हैं तो कम हो जाता है। गुमसुम रहने से अच्छा है ना कि आप अपने किसी भरोसेमंद हमराज से, दोस्त से अपने दिल की बात साझा करें, जिससे मन भी हल्का हो जाएगा और आप दोनों की जो सूझबूझ है उससे उस मुश्किल को आसान करने का कोई हल भी मिल जाएगा। हो सकता है मुश्किल आसान भी हो जाए या फिर कम भी हो जाए। तो ये सारी बातें होंगी तभी जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये महाशय हैं, ये बस चिल्लाए जा रहे हैं कि दिल दीवाना हो गया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम का हल थोड़ी ना निकलेगा। खैर, गीत सुनते हैं।

0: डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: हर दिल की बात जो होती है ना, वो निगाहों से भी बयां होती है। मतलब कहने की जरूरत नहीं है हर दिल की बात को, लेकिन जो बात कहनी जरूरी है उसे तो कहना ही पड़ेगा ना, और वक्त रहते कहना पड़ेगा। कभी कभी तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ बातें होती हैं जो वक्त रहते आपको करनी है, और कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, वक्त के पास हर समस्या का समाधान होता है। लाख टके की बात है ये दोस्तों। हर प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में, बस हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने आप सुलझ जाती हैं। इसलिए कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ही अकलबंदी है। गुजरा हुआ कल हम बदल नहीं सकते, और आने वाले कल का हमें कुछ पता नहीं है। बस आज जो हमारे हाथ में है ना, उसे खुलकर जिया जाए, यही बस हम कर सकते हैं। आज के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, आपके अपनों का ख्याल रखिए, और आपके अपनों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। खुद के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, और दुनिया में रहना है तो मेरी एक बात सुन लीजिए, गम छोड़ के बस जिंदगी का मजा लीजिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम अंदाजे बयां। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 6:15 और 55 सेकेंड हो रहे हैं। शायर मिर्जा गालिब साहब के चंद नायाब शेर और कुछ प्यारी गजलों से सजाया है आज का अंदाजे बयां प्रोग्राम। हमने शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज से।

आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां प्रोग्राम आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। दोस्तों, गालिब कहते हैं, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। भाई, ऐसे में हम तो यही कहना चाहते हैं कि दिल में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर साहब का मशवरा लेना चाहिए, और दिल ही जब दर्द बन जाए तो भाई तो दवा नहीं, दुआ ही असर करेगी, है ना।

अंदाजे में प्रोग्राम में आप शायर मिर्ज़ा ग़ालिब साहब के चंद शेर सुन रहे हैं और कुछ प्यारी सी गज़लें भी। मिर्ज़ा ग़ालिब कहते हैं, मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा ग़ालिब, मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा ग़ालिब, ये न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। तो सांसों का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जब तक जिंदगी है दिल खोल कर जीना चाहिए।

इस गजल के साथ ही अंदाजे पे यहाँ प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम ठीक 7:10 पर प्रोग्राम लेकर हम तुम, और आज रेखा जी का बर्थडे है तो आज रेखा जी पर फिल्माए गए गाने हम आपको सुनवाएंगे, तो आपकी फरमाइशों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं ठीक 7:10 पर, और कुछ ही पलों में मराठी में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूं आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम हम तुम। इस प्रोग्राम में आपके द्वारा फरमाइश किए हुए गीत हम आपको सुनवाते हैं और आज स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज बेहद खूबसूरत रेखा जी का बर्थडे है और उन पर फिल्माए गए गीत आप अगर फरमाइश करेंगे तो हम आपको सुनवाएंगे। लिस्ट तो मैंने बना ली है क्योंकि ऑलरेडी आपकी फरमाइशें जो हैं वो आनी शुरू हो गई थी और गीत भी आपकी फरमाइशों के अनुसार मैंने लिख लिए हैं। जाहिर सी बात है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और उन पर फिल्माया गया, रेखा जी पर और अमिताभ जी पर फिल्माया गया सुहाग फिल्म का जो गीत है वो जो है देवी माता पर भी जिक्र है और उस पर फिल्माया गया है। तो शुरुआत तो प्रोग्राम की इस गीत से ही बनती है।

ये धमाकेदार चुलबुला सा शरारती गीत गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने और फिल्माया गया था रेखा जी पर। फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी। तो दोस्तों, आज हम तुम प्रोग्राम में आपकी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं और हमें पता है हमारी ही तरह आप भी रेखा जी के डाई हार्ड फैन हैं, तो उनके बहुत से गाने आपने फरमाइश किए हैं और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, जो हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया, फरमाइश की, वो उनके नाम मैं लेना चाहती हूँ। डॉक्टर अंजू जी अंधेरी से, संजय और उषा पाटिल मलकापुर से, दत्ता केदार पंढरपुर से, फिरोज सिगनपुरिया जी ने मैसेज किया था, यशवंत आडमुटे जी वाशी से, यश सांगली से, राकेश माथुर पुणे से, विजेंद्र घाटोल अकोला से, पंकज मोहोड़ अमरावती से, संजय दर्शन जी ने हमें मैसेज किया था। इसके अलावा स्मिता और विवेक नेवाड़कर जी ने मालवण से मैसेज किया है, हितेंद्र दास असम से, राजश्री और अशोक जोशी विक्रोली से, सुमित मोदले चिंचणी से, अरविंद कुलकर्णी इच्छलकरण जी से, पी एस नावकर, निर्मला और विशाल इन्होंने नरवेल महाराष्ट्र से, अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली से, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से, सुनील पांचा नाला सुपारा से, दीपा पालकर मुंबई से, धीरज चव्हाण विरार से, बलकरण और अंजनी ज्योति वर्मा इन्होंने छत्तीसगढ़ से, गोपी जी झारखंड से, सुनीता व्यवहारे वर्ली से, रूपाली और नीलेश पाटकर डोंबिवली से, हीरामणि और पारसमणि वर्मा इन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज करके फरमाइश की है। अभी भी जो है हमें मैसेजेस और फरमाइशें आ रही हैं। बहरहाल, इनकी फरमाइशें पूरी करना जो है ज़रूरी हो जाता है, इसलिए अगला गीत ये है खून भरी मांग इस फिल्म से।

अगर तुम न होते फिल्म का ये गीत आपने सुना लता जी की आवाज में। रेखा जी, स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं हम और आखिरी गीत का समय बचा है, ये है जानी दुश्मन। इस फिल्म से लता आशा जी, किशोरदा और महेंद्र कपूर साहब ने गाया हुआ, और इस गीत के साथ ही आकांक्षा को दीजिए इजाजत। हम तुम प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की, इस गीत के बाद समाप्त हो जाएगा हम तुम प्रोग्राम, और ठीक 8 बजे आप सुनेंगे रॉक विद जॉक, और आपके साथ जॉकी होंगी शिल्पा जी। तो सुनते रहिए FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, और दीजिए आकांक्षा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र

0: शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित

0: चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और 2 विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का

डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान

जिसके पीछे दुनिया हो वो आपके साथ चल रहा हो, गुरूर तो बनता है और इश्क में ये पर्देदारी भी अच्छी है। महबूब का ख्याल अच्छा है।

उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा, अपना महबूब सबसे प्यारा। दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नविता के साथ।

0: मोहब्बत में हर बात अधूरी है, कहाँ पूरा होता है इंतजार, कहाँ होती है पूरी बात, बस पूरा है तो एहसास, हर एहसास इश्क में खास है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। कहते हैं एक बार आप अगर किसी से मोहब्बत कर लो ना, तो फिर उससे कभी नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत जाने देता है, माफ करता है, दूसरों की खुशी में खुश रहता है। सही है ना?

न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो जाए, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।

जिंदगी के सफर सा है इश्क का सफर, कभी पूरा नहीं होता, कभी मुकम्मल नहीं। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल।

0: आज में जीना सीख लीजिए, हर पल को जीना सीख लीजिए। एक शब्द है ना, काश, उसे मौका मत दीजिए। बहुत तकलीफ देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। रेनबो दिल से दिल तक, मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

जिंदगी को समझना आसान नहीं, जितने लोग उतनी कहानियां, उतने एहसास, उतने अनुभव। हर इंसान के लिए जिंदगी अलग सी है, उसकी परिभाषा अलग है, पर एक सच है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो जिंदगी को अपने अंदाज में जीते चले जाना ही सबसे खूबसूरत रास्ता है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ। पर ये साथ अब छूटने वाला है क्योंकि वक्त कह रहा है कि हमें अब जाना चाहिए, पर आपके लिए हम एक छोड़े जा रहे हैं बहुत ही प्यारा। दिलों की बात करो, महफिलों की बात करो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ दिल से।

नमस्कार, आकाशवाणी रिनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष

पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती देने के लिए पिछले साल आज ही के दिन ये योजना शुरू की गई थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर स्थिति अनुसार मार्ग परिवर्तन लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। उसने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों द्वारा जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया है। रूस के हमले में यूक्रेन के जापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। और भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार। प्रस्तुत हैं अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन ये योजना शुरू की गई थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मछार पर

हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर स्थिति अनुसार मार्ग परिवर्तन लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। उसने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों द्वारा जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर फिर से हमले के बाद उसे खाली करा लिया गया है। ये हमला पायलट सहित 3 सऊदी नागरिकों के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक के मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। और भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका के बीच गहरे संबंध विकासशील देशों की एकजुटता, स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास आकांक्षाओं पर आधारित हैं। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर स्थिति अनुसार मार्ग परिवर्तन लागू होंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर फिर से हमले के बाद उसे खाली करा लिया गया है। ये हमला पायलट सहित 3 सऊदी नागरिकों के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज किया है, जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक के मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। और भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें भुलाए जाना वाकई बहुत मुश्किल है। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है भुलाए ना बने, तो आइए सुनते हैं कुछ यादगार गीतों को।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन ये योजना शुरू की गई थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका के बीच गहरे संबंध विकासशील देशों की एकजुटता, स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास आकांक्षाओं पर आधारित हैं। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर स्थिति अनुसार मार्ग परिवर्तन लागू होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर फिर से हमले के बाद उसे खाली करा लिया गया है। ये हमला पायलट सहित 3 सऊदी नागरिकों के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को ऐसे नए राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के किसी समझौते पर बातचीत करने में सक्षम हो। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। और आज इंदौर में भारत वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर में 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन ये योजना शुरू की गई थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच हमारे संबंध विकासशील और देशों की एकजुटता, स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास आकांक्षाओं पर आधारित है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। दिल्ली मेट्रो के सभी 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि कल सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर स्थिति अनुसार मार्ग परिवर्तन लागू होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर फिर से हमले के बाद उसे खाली करा दिया गया है। यह हमला पायलट सहित 3 सऊदी नागरिकों के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को ऐसे नए राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के किसी समझौते पर बातचीत करने में सक्षम हो। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्ति भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप पर आयोजित किया जाएगा। और आज इंदौर में भारत वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

जाने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: महामर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।